0: एनबी रेडियो नेटवर्क www.nepalbodh.com
1: ओहो सालु पुरै छन्, ओ सालुज्यू देउडे खेल्नु नआयो? आहा मौकाले भेट भयो आज, लौ समय आया बेला खेल रन गाइहाल्ला।

गायक महेश कुमार औजी को स्वर संगीत में रहेको यो गीत को सीआरबीटी 01300041083।

0: tiene quindi possibilità poni recosa.
1: E ciel STC di sub caricat ca casasati e ciel domestico ship cat costuc bicreta.
0: Mobile ca charger, headphone, earphone, data cable, memory, pen drive, card letter, subut mulle ma plus the grains.
1: Are kisip ca mobile, torch light, khadi, tata electronic sabagri pani pai chet.
2: Surti sevan garne mitra haru ka laki. Aba vikalp kuruma aeko sa vikalp surti. Patanjali dwara utpadit any samagri pani yanvi computer institute and communication ma उपलब्ध कराएंगे।
1: एबी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट एंड कम्युनिकेशन बेलदारी बाजार कच्चीपुर।
0: मैनेजिंग डायरेक्टर जगदीश चंद्र बाग एवं एनबी परिवार।
1: कॉन्टैक्ट 9848820778
0: 9809467570
3: विन्ध्यवासिनी म्यूजिक प्रस्तुत गर्दछ।

0: एनबी रेडियो नेटवर्क www.nepalbodh.com म्युजिक नेपाल
1: मेसना डिजिटल प्रस्तुत गर्दछ।